बिना पसुर तुनाई बिना लिया तलिस है FM 93.5 FM 93.7 लाखाना Radio ITN प्रसंग वेदिकावे Radio करने लाखाने गी रश्मि लाखाने गी रश्मि प्रसंग यार गने ने कोटो रोहन विजय सिंह आदरणीय मितुरावत मताकरण नौने मुकदे प्रमिति करने ने तो प्रसंग या कोबड़े तेल नगर दियो हुल आबादी ने दाए कत्त्यत आदरणीय मताकरण दी आदे अभी तक इन्नो निनेरु अंशे निलंते इन्नो मधुसंक महामितव रानील कोस्ता अरे अपे खंडाय में इन्नो सिहत इन्नो या त्राण सिंह ने राइट अपे ए सिरु जनाव एक दूर कर दी यमुना बैठे वाले इन्नो ए सिरु जनाव बैठा हाथर दी प्रसंग के टे मैसेज करने दी बिंदु हाथर बिंदु तूने अनुतुने पाह अनुतुने हाथर टे बहुत निक मैसेज कर लेते हो तीन हरी उत्तरे दी गन बेरुना ये सकंद माला के लगे अन्य वहाँ ले सिदुरु अतरिंग अरे टोच चलिया क्वागे वादी नवानी अन्य कर तमाई सकंद माला के लगे अन्य में बबलू वाला ही के लगे अन्य तने तने अरे राउंड राउंड नितर हेट में हेट दुबल वाणी अन्य ये वर तमाई बबलू वाला ही के लगे अन्य इतनी सा अरे सी या क्यों ये सकंद माला बबलू वाला वगे इन्ने के ला सकंद माला ने तम बबलू वाला ने इन्नी सा दिन ने रिकट इन्ने के ला तमाई सी या के ला दे इन्ने उत्तरे हरियर दी गन बैरिवेट चेंदा उत्तरे क्यों हुए